0: आणि या फावता कशा तंगो अबोंखा 10 सेशन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंब्ली अधिवेशन संस्थाना बखा थांगी तंगो अबो अबिसिनि अगस्ट नालि साल नैजिसिनि सालमारिनि फोंनि दामजिसा तामानि जराव अबोंनाय निउ केपिटल कॉम्प्लेक्स आगुलि व
1: कैसा अब है के इंग्लिश मीडियम स्कूल अबोंखा हायर सेकेंडरी स्कूल कोयला शहर अब कताल क्लाइने खुलक जागो अब मियानी शालो फियोग जाखा अबोंखा शिलचर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल ते अबनो मियानो मियानी शालोनो फियोगजागै रेखा अरो एमले संजय मानिक त्रिपुरा नि बिसिं दिखाय फियोगजागम कुमती हांकनि बिसिंगो खबजा करबुक ब्लक
0: आ आसुक जरा सं कक्थुम खनाबायखा ताबो सेबगो बरकलामनि खनालायसिबोन एनआईटीओ गिसासु बुक्स आसुक थाय बरक सुबुंनानि कयमंबलाय सानजाखा बुक्स आसुक थायनका जुनियर रिसर्च फेलो एबाके प्रोजेक्ट एसोसिएट अब बुक्स आसुक थायनि मागै रोमारि इनानि नांगौ एम ए चिपास इनाखाबा बि एस एम एस इनाखाबा बि टेक इनाखाबा एम टेक फिजिक बेदेगो इनानि नांनाय कयमंबलाय तै इन्टारभिउ डेट दादा दिदाक नंनाय आब' सालमारि रोजाखा अबिसिनि अगस्ट दाननि साल नैजिब्रै सालमारि व कयमंबलाय तुमुं दोनानि हिंखाखै दोनानि फाइथाक सालमारि अबिसिनि अगस्ट दाननि साल नैजिथाम सालमारि जरा आबुनो करिब त्रिपुरा इउनिभार्सिटि अफ हेल्थ साइन्स सो किसा बुक्स आसुथाय यो सपुंनानि कयमंबलाय सानजाखा बुक्सा आसुक थायनका फार्स्ट भाइस चान्सेलर रोंमारि नायनो नांगौ बि सि सि एक्सपिरियेन्स प्रफेसर बेदेगौ

0: हेलो,
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं,
0: हेलो
2: हेलो। हाँ,
0: ए हेलो खरा खना का
2: खाना का
0: द सावर देंगे तब
2: मियां को दिगरे दर्शन
0: द खाई
2: भारत सरकार नि कक दांसिनि उयक मानि कक सेना
0: ई यक मानि कक न रगैन तं चिन दिनि सालाय दङ ता
2: भारत सरकार बाय सिं आगे कर मानि आबो बालुक जां नुं खांका गाय दासिन दा साय ब्र तो साका दिनि ब कक नुको सामानि न
0: ई
2: आबो हाय थां मानि दान सिं आबनो किसा सलो खायगुं खाता गाय साला थांका गाय सिं yongwang kai sing ma yan sing la ba ba kreng ma ni sing asak kreng bong su gya borok kreng ma ni sing apuni sim se la kha para sreng ngi ngo ngo ka apuni se sekang khanya ro

0: Hello. ए फोन का हाम हेलो खाना दे तो दो दो फोन का हाम सागर दे आं तो नहीं खरांग स्राइ स्राइ कैन खाना दे तो तब खाई तो अब कक बर्तमान गाजों दिन ते साल नई फिग मूंग ते साल नई गो फिग यग मा साल दंक अब नि फाइजों फन खना दो दाखुक अब नि कक दंगे मारे तमने गे अब नि आं फाइजों फानी मानो तमने गे जो दे खरक जबाद जो कक गाहाम के सालमानखा हेलो
1: हेलो भाई आं से गर्जलन ब्रिजेस दो
0: दो दो सारी दाखो ब्रिजेस
1: भाई बेला किनो तम थाना निया खबर बेला किनो डिस्टर्ब खने दांगो म मानो तम थाना नंग र पुरा तम थाना खब बेला किनो परिस्कार न आबो बेला किनो वान सुजन दङ लेकिन आ थाना र बहुत सिनि जे थाखम पाना र डिस्टर्ब खाय दङै दङ ता आंसे आबो किसन र
0: तो जिन के तो के कटे ब्लॉक खाने तो लाम गुरे तमें बरक बो सय सय कक सामने सुगे खाई जरा जरा नेटवर्क खामियाबले ना कक दु ब्लॉक हा पानो खाने मानी आंगो
1: আর বার দালাই কেন ছিল খাকো পাড়াও তাম ডিস্টার্ব মান খাইলাই ও অব তাম খনে কোন নং আব ডিস্টার্ব করি না ওয়ান টু কোটা তাং মাল না খুল এডু খর ন নং না আউ খর ন নি খরং খরং কেন তা গাম আসলে নং মিশিং নষ্ট না বলে অন বাকি সাং মা খাম
0: আও আও আবন তা দ বলে হাম ভাই আ অম্ব জং আবো জরা জরা জে লাইন কক দো আবো বো জগা हमें तो अब सय सैतर रही मानसु गया जो तो बरक तो फायदे हाई हाई कक दुख हेलो फायदे जिन साल दंग फिग मूंग साल नरगैनाई तो पालाने फिया सय सय फिग मूंग नरकनी वन सुकमाती नरकनी वन सुकमाती से सूंग दो तमनी तमनी की जुदा जुदा बरक नि जुदा जुदा वन सुकमूंग नरकनी वन सुकमाती सय सय फिग मूंग नरक तम न होन एबा तामनो बाहाय वान सुना नरकनि आबोनना जों दिनै सालै दंगो हेलो
2: हेलो
0: इ
2: उनको कारण ति टपिंग खास यकमानि उलो बुथि गमा खाना आबो तो
0: सय सय यक
2: इ इ सय यक मानि 1947 सन ताव ते क्राइम आनो ना
0: इ इ
2: आ रिंगो फोन काहाम न फोन हामे माने हाखला बाने हाखला फैजाक गो रेडियो दिबो

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। आईएमडी प्रिडिक्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of

वासुक लाजाओ खामं खासरंग जाओ ताकलायले इकले माबुने बिते मनने इकले यामने रिति मनने हने ताकलायले खामला खासरंग जाओ औरंग साथी बुरे हनी बसरो Babune biti mangka yamane rite mangka mana na nang lagi lah na kapung le kasra.

आओ बेला खेना खाना तो रेजापोंग जंग खाना लाइक्या विशु कुमार दे परमा बाई रेसाप जा रेजापोंग चीनी या गो जोरा ताई बतोंको जंग ताई बो खाना लाइने खाना तो रेजापोंग हासुकनी रेजापोंग रोग अजरा वो फादी जंग खाना लाइने खाना तो रेजापोंग नो रेजापनाई सम्बुल लक्षी बाई रेसाप जा रेजापोंग खाना लाइनो अजरा वो फादी

अजरते बखनालायनो रजाबमुं जादुनि ताबुकनि अजादुनि न रजाबनाय रगंखा शम्भुराम ताइ शन कुमारि खरकनि खे रजाबलायमानि रजाबमुं अजारआव फादि जों खोनालायनो खोनाथ'क रगनि अ रजाबमुं।

आओ बेलाइक खाना तो रजाबूंग जिन खाना लाइमान लाइक हासुक नि रजाबूंग पांडाओ हासुक नि रजाबूंग रखनो आओ फरि चीनीगो हासुक नि रजाबूंग जरा आस गबां गरीखा जिन गुबुन पांडाओ थांलायनानै सिगां दाइ किसीसा रजाबूंग जिन खाना लाइन कनिका मारक बाय रजाब जाग रजाबूंग

0: अब लेखन खाना तो रिसा मुंगचिंग खनाई मान लाइक हम तुम एक कमरे में बंद हो रिसाप नाई रंखा शैलेंद्र सिंह ताई लता मंगेशकर बे रिसाप जाग रिसाप मुंग तके ओम शानाय रग ऋषि कपूर ताई डिम्पल कावड़िया बॉबी तकनी खनाई मान लाइक खाना तो रिसाप मुंग कहरने चीनी बुखो कनिका बाई कहर जाग रिसाप मुंग फारिके सिंह ताई बो कक दुगिया सकलाई मने भगा थांग लायो नजरावो कक दुफाई दंखा हेलो हेलो
1: हेलो
0: दीपर कहाम ताखुक
1: बाइनो बेलाई बेलाई के दीपर कहाम
0: आओ
1: आंग्यांग शिवचंद्र पारानी रविंद्र देवरुमा
0: आ बेलाई खेलाम सगो ताखुक नन
1: पक छाया बालक सुका बाय
0: हा बियांग कमा खने
1: कमाया माने खे आनी किसा फोन द पर बेला मु तं खला बाय खनाय चतोंग ओ कोक दुखी करनी मैं तं खला बाय
0: हाय से ना
1: नांग ना कर मुंग छानो
0: ओ ककरे ग्रंखा बलाय खना हामबाय शादी द नंग दिनि रसाब मु बो रसाब मु नखना तक जाखते आ रसाब मु नख ग्रंगै मुंसासक पाटी मंग रक्त खांके सायखना रगा दिदा नंग सिखला सामा जराव बो रसाब मु बो सिनामा रक्त चले
1: ए ए आं नाय मानि सासेने ता बाय
0: आं छादि द आं
1: नाय मानि गके लाभ स्टडी नि आगी आं सासलोका पुरता बाय
0: बा

0: เอาจึงขนาดตัวโตหรือสับมงขนาดมันไรคะโอ้จราวดิลวาเลตอกแกนี้จีตาท่าจิสเกลีเอโอ้หรือสับมงเนาะหรือสับนายรักกุมารชันตายาลกายักนี่ไปหรือสับจักหรือสับมงจีนิตาคู่เอชันขนาดนั้นมุสงจักมันนี่หรือสับมงพาริกเซิงไฮไฮกอกดูยาสกีนายนะโอ้จราวชาวบงอีตองค่ะฮัลโหลHello.
1: Dipor
0: singi tak hamble takuk. Dipor kaham.
1: Uncle
0: na? Bela kena lam sokot takuk. Uncle sakar di dah.
1: Call kaju ka. Oh call kaju orang kita tanam sana. Pora ya si simi je. Si lain tonga itu. Kepung dah boleh lotori tegak kenang. Kita pung tony borong dah nak tau. Abu kaisa kaje je kaisa kaji. Pung dah boleh salai je. Abu simi parah ni tolo kay.
0: Da, kokre. Borok bokok sanamusung mani bagai line mayang kai air rong lai tong ta. Da, sat ya kon neng kringi man ka.
1: Sat. Ya bai bong na ba pi ja si lotot ti ket kena ja bong na bo kono kam ka si khaya na bong na ro buri ka ham bo kri sala ka ham bo kri.
0: Abo ta biro. Aw ta ma kok sa. Da neng kringi mang ha bla borok lotot ti ket ti jak phana neng kringi mang ha blai ke ka ham ka sagra dikhai da.
1: By an o mutuman maro no cabo o agiron mutuman or cabo put the boys kill a roman thing upon the car. Bonas aga boys of bank and abo on a city solid in Hapu. Borano Yantileta could have took the numbers and get Punkai could do Yantita to an number for a boy.
0: Jolia, Bortam Jolitamas. Jolia. Gave us all necker.
1: I am by Tinito, I think Canadian Canalia, a penalty to.
0: Kanadi, jeng na hamzagi tongka ba, sini kok rokna hamzagi tongka kanadi. Boleh sah mana kanan saya di tak kok ajar awo.
1: Iko mati kita nanti opia opia si mana?
0: Opia opia.
1: Iko mata opia opia, dil me dil dil dia.
0: Or boleh tak kene bo engkau tak kok?
1: Mati kita nanti baik.
0: मिट्टी की सनम तमो
1: ए माटी की सनम ने
0: माटी की सनम दो नायगिरा ना
1: जरोती खना ने बेचे खना लिया बंग ना बोल लॉटरी टिके सगा कॉल खै पकरम
0: आ हाया ताको खाता बाय दी नाय नाय रे बरो लॉटरी टिकट जखन बरो नि कैसे पण कॉल हा पाया नि नि हा पाई का
1: करन तो मा के अछनर नि कैसे कैसे कॉल हा बि मे संगा बं छिन पारंग कि खना लिया बंग एंग लछि यांग ते बंग हा पण बंग गुरु बाय छिन गुरु बालन दा तो बरो वे मिलिया
0: Ahaya, tak kok
1: jeng. Nari baju baru kaham tu.
0: Belai hambai. Kata bayi di kebo, kata thi di kabo tak koi ledi. Jeng kenai lay man lay nai kereng lay man lay nai. Jeng cini kok no se, cini pandarok no se jeng hamzak lay maba. Jeng orang kata lay nai kah koi nai kok kere. Cini tak kok angkel, bok kena nama sungzak mana resap mana baru tu gini. Nafia bawa ni saya sekarang cini tak kok Robindro. Bok kena nama sungzak mana love story ni.रसाप मुंगनो फाडियो जरावो खनालायने याद आ रही है और रसाप मुंग अमित कुमार ताई लता मंगेशकर भाई रसाप जाग रसाप मुंग

सौगन टोके ने रसामुंग लैला को भूल जाएंगे और रसामुंग खनाला फायदे और रसामुंग नो रसाबनाए मोहम्मद अजीज भाई रसाब जग रसामुंग।

साल पासाबाय जोंबा जाखांखै बागमाया रमैमाया तामहाय ओङै दङ अबहाय गोबां मोना आं बहाय नोंजाक फारिगै जोङो जराव खाना लायनो जिनि दाखौ खानानै मुजुंजाक माने तुम मेरि हो तकेनि अ रोजाबमुंनो जों खाना लायनो फायदि तुम मेरि हो अ रोजाबमुं

बेलाय खेना खाना तो रिसाबमुंग जों खनायमान लायखा रिसाबना करों जिने ताखुक जयंत जमातिया बाय रिसाब जाग रिसाबमुंग फाटिके जों हायना हाय दाय दांसा रिसाबमुंग खाना लायमाने बुखा थांलायनाय अजराव खाना लायनाय खाना तो

0: फाक्टनि गोबांमा आमचाइनि स्रि स्रिनि रिसाब मोसाथाय सामुं हुमुंरकनो कमरनानि लामाव थांजाक आबुनो मुथाङै नारगनानि जतनि थांचा चायतोंमुं नांगौ।
1: भारत का जो स्वतंत्र संस्कृति उसको कभी भी मिटना नहीं चाहिए। ऐसे विधाओं का ना केवल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उनकी जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे अलग है। आधुनिक होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का संस्कृति ही विलुप्त हो जाए। मुझे बताया गया है कि एकेडमी इसी उद्देश्य कला दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सभी वरिष्ठ कलाकारों को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए योजनापूर्वक प्रयास करना ही चाहिए।
0: संसद वातुमल अधिवेशन तीन पाख्या बंदे मातरम रोजाबमानियागुल लोकसभा तई राज्यसभा चंगजागिया जरानी भागई मथाक तनिना सकलाइमुंग रोजाखा आरो मानजाखा मंत्रीपक्रम नरेंद्र मोदी केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह काशुमुं मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा केबेंनाई बदलनी अजा राहुल गांधी आकसंग संसद वातुमल अधिवेशन जुलाई तालनि नैथि सानमारिनि सिमी चेंजाकमानी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह साखामताइ नुखुं हामक्राइ मंत्री जे पी नाड्डा तई बुहा मंत्री डॉ एस जयशंकर तीन बानाती सामानी विसिंगी हर घर तिरंगा सामगुतांग मानजाखा हदलामो अमित शाह साखा ओ सामगुतांग हाक्तरन हामचाजाक तईब क्राक खलायो तई बेबाक भारत लुकरकन कुंसुग्रुव बैथांग टंगथाई नग बानाती सौ मोजां साव साखा रजाक रजाक सै सै लुकरक ओ सामगुतांग करंगी टंग तई कैसा भारत कहमकुक भारत सामगुतांग तईब क्राक खलायो टंग साखा मंत्री जे पी नाड्डा हदलामो साखा मंत्रीपक्रम नरेंद्र मोदी कबक मूंबाई हाक्तर गनांगई हर घर तिरंगा सामुबुतांग पालाजागी तंग हर घर तिरंगा सामुबुतांग तीन हास्तीनी जुदा जुदा थायो तिरंगा रैली संसाजाखा जिरानिया मजलिसपुर तिरंगा रैली मानजाखा बेरेखी मंत्री सुशांत चौधरी एमएलए सुशांत देव नि चेतनबाई विशालगढ़ हुकबार खलाइने रकनी रियाक्तब असाल पालाजाखा आरो मानजाखा विशालगढ़ पंचायत समिति चेयरपार्सन अतसी दास बलंमंत्री अनिमेश देवर्मा खय हांकर नाइकल फांग चेतन भाई संसाजा खरगर तिरंगा सामुतांग चेंगी रेखा आबनरगै खय हांपांग रेमसिनी रंग नखलानी सिमी नाथतक तिरंगा रैली आउलिनी जुदा जुदा लामाओ बेरेलायखा आरो मानजाखा एमएलए पिनाकी दास चौधरी खय हांकर नाइकल फांग रजत पान्त यागबारा हांकर नाइकल फांग अबेदा नंदम बैद्य हांकर पुलिस सुपार जगदीशर रेड्डी आकसंग सालग्रा हांकर नाइकल फांग चेतन भाई बिलुनिया कलेज स्कोरनी सिमी बी के आई थंखला जरा सालग्रा हांकर बेरनी तिरंगा रैली संसाजाखा आरो मानजाखा तांसुरु मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया सालग्रा हांकरनी जिला परिषदनी कास्को अकरा दीपक दत्त एमएलए सपना मजुमदार हांकर नाइकल फांग मोहम्मद सज्जाद पी आकसंग सीआरपीएफ नि सारा नैजिब्रै नम्बर बेटालियन तई आगरतला पुर नायक्रानी चीचार नम्बर वार्डनी कथाजाक चेतन भाई तीन आगरतलाब तिरंगा रैली संसाजाखा प्रगति रंगथंखला निसिमी अरैली चेंगई आगरतलानी जुदा जुदा लामाव हिमलायख्या आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनी अकक्तमा खनाय तंबायो आकाशवाणी कक्तमा आपडेट माना बागै लग इन खलाइदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप फलो खलाइदि हदालामो फेसबुक तई एक्स हेन्डेल अल इंडिया रेडियो न्यूज तई इन्स्टाग्राम पेज ए आई आर न्यूज एलर्ट्स नाइडि अफिशियल यूट्यूब चैनल न्यूज अन एयर आई आबुन कारीब आकाशवाणी आगरतला केन्द्र ने ककतुमा आपडेट मानके एक्स हेन्डेल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक ए आई आर न्यूज आगरतला तई यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायना नांगान मंत्रीकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तीन कलियासहर दलगाव रंग खलाव संसाजाक पांडा बार्सवाल तई चंडीपुर तई कलियासहर विधानसभा केन्द्र ने जुदा जुदा हाफांग हामक्राई गनां तांगो तांगो चेंगी रेखा तई हलंथों कायख्या चेंगी रिमा बिसिंग तंग दलगाव रंग नखला सुनाम फिरमू गैलारी तई फेंसिंग जुदा जुदा आमचाय सुनामजागी तंग तीसाजाकमा ओपेन कम्युनिटी हल कतई साखाम केन्द्र ने कताल सनामजाक नक चेंगी रमू आकरक पांडा कंगनारेखा थांगई मंत्रियकरा साखा ताबुकनी हाफांग लुकुरकनी हामक्राइ खलाइनाना नाहारै सामुंतांगै दङ रों साखाम हुकबार तै तुइनि काहाम थेब সগৈরে নাও হাস্তে হাপাং সা।

0: थारी सामुदांगी दंग दिन पांडव मानजाखा सिखलाटाई थमू मंत्री टिंकू राय उनकोटी जिला परिषद ने कासगोकरा अमलेंदु दास उनकोटी हांकर नाइकलफांग मेगाजेन आकसंग यकमा मानमा सालनो रगै हास्ते गनांगै नायमथां ग्रा खाइग्या हनै साका ककतमा थुमनाय रगनि थुमो हास्ते पुलिस नि आईजी मनचक इपार बो साका आरि आमचायो नायमथां बदलनि मुरुकनै बांग्रिजाखा बत्तला मोटर स्टैंड नागरजला ताई राधा नगरनो खबै आगरतला आउलिनि जुदा जुदा आमचायो पुलिस नि नायचमुं बांग्रिजाखा मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा तिनि कलासरनि श्रीरामपुर बिजेपिनि चन्दीपुर मण्डल हाबा नकनि अटल भवन चेंगी रेखा आरो मानजाखा तां मन्त्रि टिंकु राय वाकफ बोर्डनि चेयरमेन मफसर आली चन्दीपुर पंचायत समितिनि चेयरपार्सन चम्पा दास पाल मण्डल काजकु पिन्टु घोष आकसं बुस्कां आगस्ट सालनि चिबा सालमारि यकमा मानमा साल ल फुंनि दामदग एमबिबि रोंन कतर नखलाव संसार जागानो बन्दे मात्रम पान्दा एमबिबि रोंन कतरनि प्रफेसर गौतम साहा ककतमा थुमनाय रोंनो थुमो अकग्न साखा फिल चार्चि यकमा मानमा साल पालायमानोर गै तिनि आरालिया एकता संगनि चेतन भाइ थैरिमा शिविर संसार जाखा शिविर मानजाखा आगरतला पुरनायख्रायनि मेयर दीपक मजुमदार डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त खरक थामचिसा शिविरत बायथांमुसुङै थैरोखा बुटार मुंग्रेमनि आलायदा सुनाम फिरमुं एबा एसआईआर न तुयै तिनि खुवाय हांकर नाइकलफां रजतपान जुदा जुदा रों थोंरों बदलनि आदं रग्न तुयै कग्लाम सालायख्या कग्लाम सालायमा पायै ककतमा थुमनाय रंनि थुमो हांकर नाइकलफां साका बुस्कां सेप्टेम्बर तालनि चिबा सालमारिनि सिमि अक्टोबर तालनि चिब्रि सालमारि जरा बुथ लेभेलनि अफिसारक नग नग थांगै ताइ बुटार मुंग्रेम आलायदा सुनाम फिरमुं न नाहारै नांगमानि ककथुम थुमानो हास्ते विधानसभानि स्पीकार रामपद जमतिया तिनि गुमति हांकनि पित्रा कामिव किला एकलब मडेल रेजिडेन्सियल रोंनगनि कोताल सुनामजाक नग्न सेंगि रेखा पान्डव मानजाखा तिप्रासा हांक्राय मन्त्री विकास देवबर्मा अ रोंनग सुनामनाव रांबाख्या खक ब्रैसि चार रोजाक चारसिबा रासाय रां कमनवेल्थ जुदु रांसाकनि मेडेल मान्नाय अस्मिता देनो तिनि बिलोनिया क्रिकेट एसोसिएसननि बोखाक्तै बरम याफारजाखा आबनरोगै संसारजाक पान्डा मानजाखा एमएलएजोग सपना मजुमदार हांकर नागलफां महम्मद साज्जाद पि आकसं पान्डापायै अस्मिता दे बिलोनिया विद्यापीठ जुदु फोरोंमुं केन्द्रआव थाङै थांखाताय आरो सोरों तंनाय रग्न खा बाजारोखा तबुक नबरतिबनि कक बुस्कां दामनै सिब्रियो हास्तिनि सालग्राताय सिबायजला हांकर फेरांकगै वातै वाविमान हनै हजांमुं रोखा नबरतिबार नायखुं खना सालनि साखानि तुंमारि 35 डिग्री सेल्सियस ताय खामाव 26 डिग्री सेल्सियसनि गानागिनि अतंगै मानो तिनि सालनि साखानि तुंमारि तंमानि 37.2 डिग्री सेल्सियस ताय खामाव 25.6 डिग्री सेल्सियस पाइनाय सोमोन ककतमा बारक ताबिसा राष्ट्रभक्रक द्रौपदी मुर्मु तिनि दिल्ली कोताल संगीत नाटक एकाडेमी फेलोशिप ताइ सका दिया फारका तिनि बन्दे मातरम रोसाब मनियागुल लोकसभा ताइ राज्यसभानि वातिमलनि अधिवेशन पाख्या मन्त्रीक्र प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा तिनि कलासहर विधानसभा केन्द्रनि जुदा जुदा हाफुंनि हांक्राय गोनां तांबोतांनो चेंगि रेखा ताइ हलंथं खायख्या कमनवेल्थ जुदुव रांसाकनि मेडेल मान्नाय अस्मिता देन' तिनि बिलोनिया क्रिकेट एसोसिएसननि बोखाक्तै बरम याफारजाखा ককতমা তিন বাকে অরণ পাখ্যাত উলনি ককতমা আওয়াইগান খনাফুং দামসি সতী বৃষি
1: আমার এক অবুজ প্রতিবেশী আছেন যিনি পাড়ার সবাই সোলার প্যানেল লাগিয়ে নিলেও বিশ্বাসই করেন না যে সত্যি জিরো বিল আসতে পারে। আমি বলেছিলাম ওরে এই প্রকল্পের নামই তো পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা। তারপর যখন দেখলো এক এক করে সকলের ইলেকট্রিক বিল জিরো এলো তখন বলল এবার লাগিয়ে নিচ্ছি পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা। যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন পিএম সূর্যঘর .gov.in।
2: সময়ের বৃষ্টি

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार

0: सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग

0: बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में

0: पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: देता।
1: मैं इसी को अगर शेर में कोई तब्दीली नहीं करूंगा, पढ़ने के अंदाज में तब्दीली कर देता हूं, माने बदल जाएंगे। तवज्जो। अरे वो जहन्नम और मुझे दे, अरे वो ये बात

कहे या ना कहे, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं नात या जो भी चीज गाऊंगा बदलील होगी, सबूत होगा, कोई चीज खिलाफ मजहब नहीं पेश करूंगा जिससे एतराज हो, ऐसी बात नहीं। लिहाजा हर चीज के पीछे एक दलील होगी, और खुदा का फजल है कि मैंने उर्दू के साथ साथ इस्लामियात में भी एमए किया और मुझे उबूर है, इस लिहाज से कोई चीज ऐसी नहीं कहूंगा कि जो काबिल गिरफ्त हो। लिहाजा समाप्त फरमाइए, हर चीज के पीछे एक दलील मौजूद है। तवज्जो। ऐसी खूबी न किसी में देखी, चांद शक हो गया उंगली जो उठी, तेरा तू नूर फिशाने आलम है, वल्लैल है तेरी जुल्फ दोता तू रहा तो जाने आलम है, तू फक्र हुआ आदम के लिए, तू रहमत है आलम के लिए, तखलीक हुआ तू करम के लिए, तू फैज रसाने आलम है।